0: The hits are on. Hi, I'm Ariana Grande.
1: This is Post Malone.
0: Kathmandu's number one hit music station. Hits FM 91.2.
2: आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक हरेक दिन पढ्नुहोस् बजार बजार का समाचार का लागि नया प्रविधि अवसर तथा व्यावसायिक गतिविधि का लागि लगानी बचत बैंकिंग तथा बीमा संबंधी जानकारी का लागि शेयर बजार को मिहीन लेखाजोखा तथा देश विदेश का विश्लेषणात्मक समाचार का लागि हरेक दिन पढ्नुहोस् आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक हरेक दृष्टि आर्थिक को